श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.diversefm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे। रातना 8-10 कलाके 102.8 एफएम पर लूटन डंस्टेबल आउट एंड रिचेस लेटन बजर डेल्सबरी मिल्टन किंग्स हॉलिडे मिल्टन किंग्स न्यूपोर्ट पेगनल ने नॉर्थम्प्टन ना टोच माने आ बाजू फरी पाछा आवे तो सीधा बेडफोर्ड बाजू बेडफोर्ड थी स्टीवनेज वेलिंगटन सिटी हेटवेल वेलिन नेबवत अने आजूबाजू ना अनेक विस्तारों में या तो पछी लूटन गाम में होय डेब रेडियो पर पण सांभळी सको छो अने आजूबाजू ना विस्तारों में पण सांभळी सको छो अने दुनिया ना कोई पण खूणा में हो तो www.diversefm.com ऊपर या तो पछी कोईपण माध्यम द्वारा आप सांभळी सको छो। अलेक्सा ऊपर पण सांभळी सको छो अने मिक्स क्लाउड ऊपर mixcloud.com/diverse102FM ઉપર પણ સાંભળી શકો છો। આવી જ રીતે ગીતમાલા કાર્યક્રમ દર ગુરુવારે આપની સમક્ષ રજૂઆત કરવાની પૂરી કોશિશ કરીએ છીએ। રાતના 8-10 કલાકે 9 અટવટ વખાણું આજનું આમ છે, કાળું તળાવ ભર્યું પાણી। કાળું તળાવ ભર્યું પાણી, એમાં નાચે ઢીંગલી રાણી, એમાં નાચે ઢીંગલી રાણી। હા, સાવ સહેલું છે। આમ સાંભળ્યા છો ગીતમાળા। સ્ટુડિયોનો વોટ્સએપ નંબર છે 0756686863। તમે સાંભળો અને બીજાને સંભળાવો ગીતમાળા। સાંભળીએ લલિતાબેન ગોડાત્રાને।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है ये तुम्हारा कंगन सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही

0: मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम।
1: नंबर वन फॉर डांस एंड आरएनबी, डाइवर्स एफएम। Your number one station for dance and R&B. This is Diverse.